0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। कुमामोतो प्रीफेक्चर में हालिया जलजिले से मुतासरा गैर मुल्कियों के लिए कई जुबानों में मुतरजम की सहूलियात दस्तियाब हैं। प्रीफेक्चर की हुकूमत आमतौर पर यह सहूलत रहायशी मराकज में क्याम पजीर अफराद और दौरा करने वाले गैर मुल्कियों को फराहम करती है। प्रीफेक्चर के हुकाम का कहना है कि ऐसे गैर मुल्की बाशिंदे और सियाह जिन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो वो भी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस के इस्तेमाल की मिसालों में तिब्बी इदारों और गैर मुल्कियों को तिब्बी बातचीत या मुआयने के दौरान बातचीत करने में मदद और गैर मुल्की शहरियों और किसी तिब्बी इदारे के दरमियान राबता वगैरह शामिल हैं। यह सर्विस 22 जुबानों में दस्तियाब है, जिनमें अंग्रेजी, नेपाली, हिंदी, बंगाली और उर्दू शामिल हैं। ये सर्विस मुफ्त है, ताहम पेशगी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन का अमल कुमामोतो प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट की वेबसाइट के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की तकमील के बाद सार्फिन को सर्विस सेंटर से इस सहूलत से इस्तफादे के लिए एक मखसूस टेलीफोन नंबर मौसूल हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और इसराइल के रहनुमाओं से बातचीत की है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त पर हुई हैं जब ट्रंप दोनों खित्तों में जंगों के बारे में अपने रद्दअमल पर गौर कर रहे हैं। ये अलग अलग मुलाकातें मंगल को व्हाइट हाउस में बंद दरवाजों के पीछे हुई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात अच्छी रही। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमरीकी साख्ता पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की तैयारी के लाइसेंस पर बातचीत की है और रूस के साथ अमन की नई सफारती कोशिशों के लिए अच्छी उम्मीद का इजहार किया। ट्रंप ने बाद में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। फरवरी में दोनों ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से दोनों रहनुमाओं की यह पहली बिलमुशाफा मुलाकात थी। इसराइली मीडिया की इत्तलात के मुताबिक उन्होंने बुनियादी तौर पर ईरान पर तबादला ख्याल किया और तेहरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के अज़्म का इयादा किया। इसराइली हुकूमत ने ट्रंप, नेतन्याहू और अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस की एक तस्वीर जारी की है जिसमें तीनों मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका मकसद ये जाहिर करना है कि दोनों फरीकों के दरमियान अब भी किस कदर करीबी ताल्लुकात हैं। अमरीका और इसराइल के दरमियान लेबनान के मामले पर मुबैना तौर पर तनाव में इजाफा देखा गया है। जापानी हुकूमत के एक पैनल ने फी घंटा कम अज कम औसत उजरत में तकरीबन 5% इजाफा करने की सिफारिश की है। 55 येन का यह इजाफा गुज़श्ते साल के बाद तारीख में दूसरा बुलंद तरीन इजाफा होगा। यह सिफारिश मुल्क भर में उजरतों में इजाफे के रुझान के दरमियान की गई है। वजारत मेहनत के पैनल का हदफ रवां माली साल के लिए फी घंटा कौमी औसत उजरत को 1176 येन या तकरीबन 7.18 डॉलर तक लाना है। ये रकम गुज़श्ता माली साल में हासिल शुदा 66 येन फी घंटा के हदफ से कम है, लेकिन इसके बावजूद ये पैनल की जानिब से माली साल 1978 में सिफारिशात के आगाज के बाद से दूसरा सबसे बड़ा इजाफा होगा। पैनल ने उजरतों में इजाफे की मुल्क की रफ्तार की निशानदेही की, लेकिन अफरात जर की सुस्त शरा को उजरत में कम इजाफे की सिफारिश की वजह करार दिया। अब प्रीफेक्चरों के पैनल हतमी आदा दुश्मार पर बातचीत शुरू करेंगे। हुकूमत 2030 की दहाई के अवाइल तक कम अज कम कौमी औसत उजरत को 1500 येन या 9.15 डॉलर फी घंटा करने के लिए कोशिशें कर रही है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबर पर एक नज़र। मंगल को आने वाले ताकतवर जलजले के बाद जापान के जनूब मगरबी प्रीफेक्चर कुमामोतो में सीज़मिक एक्टिविटीज़ यानी जलजला जाती सरगर्मियाँ बुलंद सतह पर बरकरार हैं। हुकाम ने